देखने विचार, रंग हसे रंग रोवे चुप्पी कर जाहे, परवाह नहीं किसे केरी, बाज सच्चे ना दरवा चुपर खर्च मंगा जबे देता खाहे, दीवाने को कल में कहा मातमा में दर लेख लेखा पीड़ छुटे, नान का ज्यों तेल पोड़।

चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आरे आयत, देग तेग फतहे बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री

तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सोहेल, राखो राखनहार दयाला।

0: दुख सुख तुझे पास।
1: निमाण्यो के मान गुरु, नितान्यो के तान गुरु, ने उठिया की ओट गुरु, ने आसरयो के आसरा गुरु। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जियो महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ

आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले किते छुटे नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: दुख दारू सुख रोग पया जा सुखताम ना होई, तू करता करना मैं नाही, जा हो करी ना होई, बलिहारी कुदरत बसिया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ। जात मह जो जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया।
1: सोदर राग समहला पहला।

राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मन्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहे हम एक न जन्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो हे बखानियो दोहरा सगल द्वार कौ शाड़ कहियो तुहारो द्वार वाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार कौ शाड़ कहियो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया साहिज सेती मन वजियां वाधाईया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दो ता गावहु हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच साहेबा क्या नाही कर तेरा कर ता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विट्टा हो जिस दिया एह वड़ियाईया कह नानक सुन हो संत हो शब्द तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सभागै कार सभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक को मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुन हो वड पागी हो सगल मनोरथ पू

हर हर कंपै बाला जियो न जानो क्या करसी पियो रैन गई मत दिन पी जाए पावर गए बग बैठे आए कच्चे करवे रहे न पानी हंस चलिया काया कमलानी कार कन्या जैसे करत सिगारा क्यों रलिया मन भाज पतारा काग उड़ावत पुजा पिरानी कह कबीर एह कथा सिरानी गली असी चंगिया आचारी बुरिया मनहो कसुद अकालिया बाहर चिटविया रीसा करह तिनाड़िया जो से वह दर खड़िया नाल खसम रतिया माड़ सुख रलिया होंदे तान नताड़िया रह निमानड़िया नानक जन्म सकार था जे तिनके संग मिला बहुत जन्म बिछड़े थे माधव एहो जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जियो चेर पयो दर्शन देखे लिख कत है न छूटिय खेनो खिन फूल नहार बखस नहार बखस ले नानक पार उतार सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अर सौ कुरसों चटिया तुद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे सतनाम श्री

हम आव गुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एके उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सुकह टल गुर सेवी, एहन सुसहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सज्जन

दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया साधन निका, अनाज मंगो सत सिका। गौ पैस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी, जन तन्ना लेवे मंगी। गौ पैस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी, जन तन्ना लेवे मंगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्मं, हस्त काया रख्या परमेश्वर है, आत्म रख्या गोपाल स्वामी, धन चरण रख्या जगदीश्वर है, सर्व रख्या गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है, भगत वत्सल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत है। बिलावल महला पंजवा, ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई। चौ गिरद हमारे रामकार, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई। रहाओ राख लिए तिन रखन हार, सब व्याद मटाई। कहो नानक कृपा भई, प्रभ भये सहाई। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एको अंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्त आखिया, करते का होए विचारो। तेत कर गाव हो सोहेला, सिवर हो सिर जनहारो। तुम गाव हो मेरे निरभो का सोहेला, ओम बारी जित सोहेला, सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े संभालियन, देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कवन सुमार। सांबत साहा लिखिया, मिल कर पाव हो तेल। देहो सज्जन आसीसड़िया, जां होवै साहिब स्यों मेल। घर घर एहो पाहुचा, सद्दड़े नित पवन। सद्दन हारा सिमरिया, नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश। गुर गुर एको बेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए। सो घर राख बढ़ाई तोए रहाओ, बेसोए चस्या घड़िया पहरा। थिती वारी माहो हुआ, सूरज एको रुथ अनेक। नानक करते के केते वेस, राग तनासरी महला पहला। गगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती।
धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द बाजंत भेरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसद चानन सब मह चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कबल मकरंद लोभत मनो आनंदनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारंग कौ होए जाते तेरे नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बह भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिब मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन बड्डा हे कर डंडौत पुन बड्डा हे रहाओ साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर होमे कंडा हे ज्यों ज्यों चले चुभै दुख पाव है जम काल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो विनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आगे वसन सुहेला औध घटे दिन सुरै नारे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ एहो संसार बेकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पियावे एहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहज हो हर गुरते मन है बसेरा निज घर महल पाव हो सुख सहजे बहर न होए गो फेरा

सुख सहज सेती, सुख सहज सेती कर जाते। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड बिखै बिख खाही। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा सो प्रीत लगा। एक उत्तम

0: सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूर्त अजुनी सह भंग गुर प्रसाद आसा महला पहला वार सलोका नान सलोक पी महले पहले के लिखे कुंडे आसरा जे की तुनी सलोक महला पहला बलिहारी गुरे अपनी दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चानन होदे आ गुर बिन कुर अंधार महला पहला
1: नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुवाड़ जो छुट्टे तिल बुवाड़ जो सुन्जे अंदर खेत खेते अंदर छुट्टे आ कहु नानक सोना फलिया है बपड़े पीतल।

0: हाथ चलाया अगे करनी की दवाची है बहले खातर समझाया खाना हो भी पाओ दी हुन सुनिए कहरू आया माने अंदे जन्म गवाया
1: दीन दयाल सुन बेनती हर तब हर राया राम राजे हम मांगो सर

मंगते गिड़मड़ पूरा ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजा गावे राजे रानिया बोले आल पता लकटकिया के मुंदड़े लकटकिया के हार जित तन पाइए नानका सेतन हो वैशा ज्ञान नगली ढूंढिए कथना करड़ा सार करम मिले ता पाइए और हिकमत हुक्म खुआर पौड़ी नदर करीजे।

पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खा।

नाही जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ जात मैं जोत जोत मैं जाता कलकला पर पूर रहया तू सच्चा साहेब सिवत सवाले हो जिनकी तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर।

0: देखो जाने पे हो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
1: एक कृष्णं सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास।

0: बिन कुंभ ना होए
1: निकाह बदा मन रहे
0: गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़ा होए गुण का दायो मी साध न मारिए जे कल कल ना तेवे हो ना उपचारिए सिकलन खेड़िए जित दर गए गया हारिए पड़िया ते ओमिया विचारे अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मार।

0: कच्चो कंचन पयो शब्द गुर सरवणे सुनियो। बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भनियो। लोयो होयो लाल नदर सतगुर जद तारे। पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो बिचारे। काठों सिरिखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुर चरण जिन परसिया से पस प्रेत सुर नर पए। काठों सिरिखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुर चरण जिन परसिया से पस प्रेत सुर नर पए।
1: जाम गुरु होए वल तने क्या गारव दीजा। जाम गुरु होए वल लख बहे क्या कीजा। जाम गुरु होए वल ज्ञान र त्यान अनन पर। जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चे कर। जो गुरु गुरु अहनस जपा दास पाठ बेनत कह। जो गुरु नाम रिद महतर सो जन्म मरण दोहुते रह।
2: गुरु बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुरु बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुर कर सच विचार, गुरु करे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन, अगन कटे सब तेरे। गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुरु सत कौ नल कह। जिन गुरु ना देखियो नह कियो, ते अक्यथ संसार मह।
3: गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। तारण तरन समरथ कल युग, सुनत समाद सब दिसकेरे। फुन दुख नाश सुखदायक सूरो, जो धरत ध्यान बसत तै नेरे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत, मुख देख तक जाहे परे रे। जौ हर बुद्ध सिद्ध सिद्ध चाहत, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। जौ हर बुद्ध रिद्ध सिद्ध चाहत, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।
4: गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। होते जो प्यास प्योस पे बन के, बंचत सिद्ध को बिद मिलायो। पूरन पाओ मन ठौर बसो, रस बासन सो जो दैद सुतायो। गोबिंद वाल गोबिंद परे सम, जलन तेर विपास बनायो। गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो।
5: समरथ गुरु सिर हाथ तरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अगन हरियो, निस्वासर एक समान ध्यान। सो नाम सुने सुत पान डरियो, पनदास वास जगतर गुरु की। पारस भेट परस करियो, रामदास गुरु हर सत कियो। समरथ गुरु सिर हाथ तरियो,
6: अबराखो दास पाठ कीला। जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखट फारे कर आ। ਹੁਣ ਦਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ।

दिस सहज सो भए दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसमदि नूर अर सहो कुरसो चटिए तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सज्जन सचा पातशाह सिर शाहद शाहो जिस पास बैठिया सोइए सबना दावे साहो सज्जन सचा पातशाह सिर शाहद शाहो जिस पास बैठिया सोइए सबना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा ताप गवा

जो मंगह सो लेवह प्रभ अपने संता देवह हर गोविंद प्रभ रखिया जान नानक सच सुपाखिया जो मंगह सो लेवह प्रभ अपने संता देवह।

पान करो पणदास सुवास चतुर गुरु बारस पेट परस करो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ तरो समरथ गुरु सिर हाथ तरो समरथ गुरु।

बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। राम दस हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद ना सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी।

सब को वेखने बड़ी हेट चलाए दा आपे दी बड़ी आपे ही कर्म कराए दा बढ़ो बड़ा बढ़नी दनी सरे सर तंदे लाए दा नदरों पठी जे करे सुलताना काहू कराए दा दर मंगन भिख न पाए दा दर